छ ज्याजोले चाहिँ थि थि कठ ज्याजो झ्याका या चुनागु ज्या गठे ठाबले चाहिँ गब्ले गब्ले छिक्पनीको प्रतिभा कायु कठ ज्याजो झ्याका चुनागु ख रास गब्ले गब्ले चाहिँ निवा खेले योगदान बिया सना चना डिपी भाजु या मैजु पिण्ड ठन स्टुडियो टक हया वि कपी नाका नाप चाहिँ यही पुका खलबल या नगु या चुनागु ख रास अठे या न छगु सेन्सरबार चाहिँ छगु शनिबार चाहिँ छिकपिण्ड चाहिँ निसलिस कास मिटका वयाचना गोख रास गब्ले गब्ले अन्तरासरी न मिटका वयाचना गोख ठोए झोले चाहिँ ठ छुया उठेका ठास चाहिँ ठन छिकपिण्ड निसय जुना वैक टु छु विषयले निसजीले ऊ चाहिँ डक्सेना पनि नेवा रास्त्री मे छपट्टे ठोट नेवा रास्त्री मे ढुङ्का जग्गा छिकपिण्ड निस नटेको जी अहिले हेप्पीसँग मे न निङ्किएको जी नेवा रास्त्री मे आइटा

0: हजुर थो नेवा राष्ट्रिय मेट हुँका झिया टपलङ्के झ्याझोले डाउनी गुजु मजुल अन्ताजु
1: हजुर पक्का न झ्याझ झ्याझको यही पुगु टाइमै थौ यही पुगेको झोले नि म वेचनाको दु अले थौ चाहिँ विशेष याना गुला धर्मया लिपाङ्गु दिन ख गुली पास्पी थौ स्वयं बिचाइला न झाइदि रुङ्कलाजी अले मेगा बायो ख्वासेको दिन न ख बायो ख्वान स्वयादिलाजी अले भा मडुपी पास्पी सँग चाहिँ थौ बाया त लुमङ्का श्रद्धा दान न याना दिलजी थो विषम परिस्थिति दु झी वङ्गु वङ्गु शनिबारे न थौ तुलसी जुन यको ख तयारी रुङ्गु गुदु झी चाहिँ थोए वङ्गु दस गते वगु थो खुसी बार याना चाहिँ छिउ देख यको छेठी जुगुदु अलि यको मानवीय छेती न जुया चुङ्गुदु आतक मनु न तना चुम्पिन गुली गुलीला लुया न वै चुङ्गुदु अलि थोए स्थिति आट चाहिँ छिछ थाती तया ज्याजो चिगु यहीँ पुगु टाइम चिगु यहीँ पुगु ज्याजो यो हेटु कठमा चाहिँ ज्याजो चिगु यहीँ पुगु टाइम ह्याके त थौ चिपिनी म वै चनागु दु छिकपिन ठुक इले गन्चना दिया छ्याना चना दिया वन चित कना दि फै थौ चाहिँ तुलसी जुन धाइदी रुङको गुदु थौ ज्याजोले चाहिँ नेस ते गुजी ढका नेस चाहिँ छुखले आ तुलसी जुन
0: ब्यादि हासे दु नि नेस चाहिँ ठोय वङ्गु डहवङ वनि टुङ्गु दस गटे चाहिँ जुगु विनाशकारी ओ जिया चाहिँ पीडित चिया चम्पी उयो कपिन्ड चाहिँ ग्वालिया कठ चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिज उपत्यका समन्वय समिति पाखी चाहिँ उपत्यका थिथी ठासे होल्डिङ सेन्टर चनाडिया चनाडी पि चाहिँ ग्वालिया कठ चाहिँ बैडार बाबु सङ्किपा थोया वैगो असोज तिन गटे सञ्चारबार चाहिँ च्यारिटी सो या टिङ्गुटु वे ग्वाली कठ चाहिँ च्यारिटी सो चाहिँ उठोया विषयले बैडार बाबु सङ्किपाले विषयले चना झिप्सा यसन है गुडु उठोया विषयले झिसँग खलबल न यागुजी फोनिन ज्याजो ए ख फोचिक फोन न यान डी फै यस चाहिँ यो सँगै टे छिकपिन्ट ठोया बैडार बाबु सम्बन्धी भयो यस झिम यो पिने पाखी चाहिँ मुख बैडार बाबु सङ्किपा विषयले खलबल यान ठोया डुनी चङ्गे छिकपिन्ट यस टेगुजी हो कि चाहिँ छिकपिसँग फोन यान डी फै सरा चाहिँ शिरपा न डुगुए जुल फोन यान डिया लक्की कलर जेटा
1: हजुर पातन समुदाय काखा सिहार केन्द्र पाखे मिखे जाची आगो छौ कुपन लिसे क्यापिटल मम किङ जमल पाखे न्यु प्लेट मम भपिगु कुपन छ म पासा ट्याका दिफै ढासा मे म पासा ट्याका दिफै
0: मेरो पासान ट्याका दिफै माडे ए फुटु छे पाखे तया दिगु छगु कुपन वा छगु कुपन चाहिँ निम्से निति भजन भव्या दि भइरहेछ अठे होइन साम खुसी चनाडीमा भाजु रविन्द्रमान जोशी जी तया दिगु एनटिसी आगो रिचार्ज गरे न ट्याका दि फै
1: नक्तनी तुलसी जुना धाइदी रुङ्गुदु वङ्गु थोए भाद्र दस गते खुसबा लाना चाहिँ गुली मनुतोसँग चाहिँ थगु ज्यान गुम्याना दिल अलि आलिन्त नि पि पासपिन त
0: नलाउनी
1: पक्का न यो कोसित चाहिँ थन थुजा विषम परिस्थिति चाहिँ ग्वाली यागु निटी चाहिँ थो झिगु सोचे जुई टेङ्गु जुल बहिदार बाबु सुकुन्दा फिल्म्स प्रोडक्सन प्राली पाखी देगा दिगु थु फिल्म खरास थुके निर्देशक लेखक चाहिँ सुख छि टुकमायन डिफै थौया दक्ले नापाङ हजुर डक्लिन नाबा नेस थोए ख थुगु इले छिक्पिसँग फोन याना ह्यादिया बहिदार बाबु चाहिँ सुना चोया दिउ ख अलि ठो सङ्किपा चाहिँ सुना निर्देशन याना दिउ ख नाङको ना दिफै महिला तुलसी जो
0: पक्का न उखि निति छिक्पिसँग चाहिँ फोन ल्या ढा छिक्पिन त ङेनी पिपी सोपी खु 52 346 झिगु थियो स्टुडियो फोन ल्या फोन याना थो जिनक चिन्तैगो नेस यसा बिहा दिन फै मफ्लो ढास ढुकमा जग्न याना दि फै मफ्लो अन्ताजु
1: हजुर पक्का न
0: याना थो छिक्पिसँग टिकट न्याना चाहिँ सहयोग छुटै बारी पिजी ज्या घापा ज्या चिन्ट ग्वाली या कठ चाहिँ टिकट ठो टिकट चाहिँ म चाहिँ न्यास टैटो डुला न्यासलाई छिक्मिन्ट झिठो पक्क पसिना धाइनि सा नेवा सकिबा चाहिँ न्यास मु छिके टर ग्वाली कठ त छुन्न छिके मुखु थिएँ त अन्त
1: खो छिथौँ कनि विभिन्न सङ्घ संस्था ग्वाली न फोना चङ्गुदु एल्छीसँग गुली पासपिसम बिहानन दिलेजी तर थो छ सङ्किपा सोया थन मनोरञ्जन न क्याफे रास वे टेबा मेपिन त ग्वाली आउ न फै उठो छौ फोने चाहिँ पास चाहिँ रुङ्गुको थियो एकै त लस खुसिया
0: जोजो लपा
2: जोजो तुलसी दिदी अन्त दिदी
0: हजुर जोजो लपा निमसिए पाखे न
2: जिस असुजन महाजन कृतिपुर तुम्रो तोर्न
0: सुजन ज्यू मफु
2: মাফু অলচুচি দিদি মাফু হ
0: মাফু নি এ জিবি নি মা জাজো নি কা ওয়া চন গুখ
2: আরে বৈ ভবিষ্য ল হ
0: বজি নয়া ওই গুখ সুজেন জু
2: আচ্ছা
0: থা জাজো নি না চনা দি গুডলা
2: জাজো নেনাক ন দো
0: থা চাই সু বিসেলে খলবলি আউট গ তা কনঙ্গু নি না দি টুন জি নি ঠুলো জি মিছালা
2: আ আকন খদে আপলে
0: বৈডার বাবু সঙ্গে কিবা নিয়া দিয়ে কি মরিয়া বলে কীর্তিপুর সিনে প্লেক্সে না ঠোকে চারি দি সোল জি ঢুঙ্কল বলে কিনে ঢুঙ্কল আলি পালি পাই বিচায় মানে আয় মিটিং ঠোয় বৈগু অশোক তিন গটে সঞ্চরবার পাটন টোকা অশোক পার্টি প্যালেস কেনি গোটি কেনি টিঙ্গুটু বৈডার বাবু সঙ্গে কিবা नेपाल भाषा नेपाल भाषा पाखी चाहिँ भाषा चाहिँ सुन्ट सिए झिँ छटा इले एघार बजे ठुलो सुन्ट सिए झिँ छटा इले अठेन नेपाली भाषा डबिङ यान त सियो जोस चाहिँ हिने सिए दुईता अहिले टिकटी म चाहिँ यहाँ सटकटु ठो चाहिँ यहाँ सल टरौँ खम्म खोठो बारी पिडित पिन्ट घापा ज्याचौँ पिन्ट ग्वालिया कोठा चाहिँ अलिक ठोसै अपन छिकपिस चाहिँ ग्वालिया मडोस चाहिँ अनि हले झ्याबले झिटो सपोट दिप है तर टिकट काट चाहिँ यहाँ सटक मुख अनि सुजनजी सोझ ह्याडी खो कि मखो
1: বহিদার বাবু চে সুনান চয়া দিউ খ অলঠো সংকিপা নির্দেশক সুখ নির্দেশন সুনায়ন দিউ খ নির্দেশন নাম দেকুম নির্মাতা রাম লগানিকর্তা জল নির্দেশন লেখন নাম চয়া দিম অলে সংকিপা দেকা দিম
2: নির্দেশন
0: কিপালে মো ভূমিকা পাখে মিঠা না ডিগুডু কল সেটা অফ কেউ নিটি চাই জি অসুন
2: জি
1: ধ্যার না সর নেম চাই লিপায়ু না চাই সাহি খাহি হাজার আচ্ছু সাহি জি ওই
2: কাহি
1: সুজেন মহর্জন কৃতিপুর তু দটোল পাখে জাজলে পোতিকা ঝাই দিল অলি জি সঙ্গে নাই গুন হেস আলি সন বিয়া দি গুদু প্যাসি খ মকু বলা চিস লিপাঙ্গু ইলে ঠ্যাগু জি আই তো রাসা স্টুডিও ইলে চাই না পাঙ্গু দীপায়া ই ওয়ে ঠুঙ্কু গু সংকেত চাই টেকনিশিয়ান পাশা ইয়া নাচনা দি গুদু ওসিয়ান ইয়া চাই ফোনে চাই পাশা নদি পাশাই তো ছৌ ক্যা লাইট নি হাজার পাশাই চাই
0: লস্কিয়া
3: ঠোইলে
0: হাজার छिटो बैडार बाबु सोइदी ढुङ्के मरु नि पक्का ना सोच है दिजको जे मना टुना छन अले
1: बुद्धजु पासा पिन्त अले छेज पिन्त न बना है दि रिउ न भल्स क्याचना छ र
2: थो जि एकदम स्यानियम पासम दु रात तामला रात जि नि व त अब व जि क जि पक्का
1: हजुर एक एक सुबा
2: सुबा गनि एकदम सुबा
1: ब्यादि ल हजुर एक एक सुबा बेक ख
0: फुलाम बानीसुर पाखे चाहिँ बुढो रत्न भज्राचार्यज्यू आ स्टुडियो इल चाहिँ डक्सै नापाङ डिपा इजुगुडु अठिजुनी चाहिँ हाइट डिपा छिरिस फोन चाहिँ फोने सप चाहिँ डिपा को चाहिँ यो इले चाहिँ सपो तयार दिए त इना भएन छैन
3: गजलुले ओखै छोपे के रम्बि मेरी माया
4: नमस्कार म सुरेश कुमार
3: बैसले चटक्कै
4: तपाईले क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज

0: धेरै भन्दा धेरै HD च्यानलहरू सहित प्रस्त टिभी हेराइको अनुभव लिनका लागि क्लियर टिभी अपग्रेड टु क्लियर टिभी.
1: हजुर थुगुली पागती पारुङका हाक नछ लस्कु सिया नाच न जाजु चिगुन यही पुगो टाइम जाजु चिगुन यही पुगो टाइम हेथौ यही पुगेको झोरले यही पुगेको रकम खुकी आजिगु देशे जुयाचुङ विषम परिस्थिति या त चाहिँ थोक हाले चाहिँ वा सतेगु कुटया नाचुनाको दु वहे छोले चाहिँ थौ जाजु चिगुन यही पुगो टाइमे थो आवैगु असोज 3 गते केन्टेङ्गु बहिदार बाबु सङ्किपाए सम्बन्धी जोना चाहिँ ठाउँ ज्याजन या काचनाको दु ठाउँ विशेष याना चाहिँ थुगु सङ्किपा आवेगो असोज 3 गते पाटन ढोका या असोक हले केन्टेङ्गु जुल थोसो विशेष याना वङ्गु वगु थो 10 गते जुगु थो खुसी बाल्न लाना प्रभावित जुपिन्त चाहिँ आर्थिक ग्वालिया नीति चाहिँ थुगु सङ्किपा केन्टेङ्गु ख वहे चोले ठाउँ या सनन्त चनाको दु आ छिकपिन्त
2: सङ्किपा लागुली आर्थिक देवा वगु कलेक्सन डुगुडु व चाहिँ त भएको कापाजिया सुनाचना डिपी त चाहिँ ग्वालिया ग्वालिया कठाइ टो च्यारिटी सो किने टिङ्गु ख उके निति चाहिँ छिकपिस फया फको बाजु मेजिपी सो छाइटकन मन टुनाचना ठ चाहिँ फोने सपट्या डिफेङे नि पिपी सो पिखु 52443 थुकिया चना झिस चाहिँ ठोए च्यारिटी सोरे किने टिङ्गु सङ्की पाए ध्वनि चना छिकपिन्त न्यसट्या चनाको ख डास आज तया चुनगु न्यस चाहिँ ठो सङ्कीपा डेकाडीमा सुख इकयो ना चाहिँ डेटालाई नियम डु होला छ म सनिर्मातना डु तर छिक्मिसा चाहिँ यो मैले छौजको नाको ना ढिसान फाछेल मनाइएको जी मजुल अन्टाज्यू
1: सङ्किका सङ्किपा देका म सुख ढका चाहिँ झिस नापाङ्गु नियनाउ खरास आ रासा लगानीकर्ता चाहिँ सुख ढका चाहिँ नियन्त्रण निकङ्गु निय लिसब्या दिफै थोकै चाहिँ निम दु लगानीकर्ता वे कपी मध्ये छ म न्याम सियोर लिस
2: नाकामे छ म न्याम सियोर ना
1: फोन ल्याएको फोन यहाँ ज्याजु छ बोटिका दिफै अहिले ज्याजु छ बोटिका मदिसा थो सङ्किपा सोया ग्वालिया नदी ढ्यो न बोल सकिया चुना नाच नचिसन थन थिथि नम्बर चाहिँ बिर नागो दो कन्फ्युज मजुका छगुरा नम्बर बी न्यू नम्बर बी थन ज्याजो ने नाच नदी पास पी सक्सियो न दिमाग हेदो झिगु ज्याजो या जागुथी राजु राजदेवजी यागु मोबाइल नम्बर लिसे ज्याजो न्याकामी तुलसी जुयागु न नम्बर छिकपिन्त हाक्न छ बितिनागु दु कन्फ्युज मजुक रहेका चाहिँ ठो नम्बर बितिनागु ख अहिले थोरै नम्बर चाहिँ हाक्न छ मेमेमी ऊ पास पिनेको नम्बर न बिगुजी हान लिपाङ इले चाहिँ फुकसियु छक्ल सर र बिगुजी आइतार हासात हो
2: जिउ नम्बर कनेजी 98 41 75 41 74 98 41 75 41 74 चाहिँ जीको नम्बर जुल रास अठ्यान गौतम राज साकीजी यो नम्बर नकनेमा कैयाको नम्बर ख 98 41 55 65 10 अठ्यान राजदेव बज्राचार्यजी यो नम्बर नकने 98 41 60 44 07 ठो नम्बर सपोटया चाहिँ छिकपिसा चाहिँ टिकट एनिटी कन्फर्म याना डेटा इनाफ याना जना मजुल
1: हजुर पकान सो चाहिँ न्यु इले दो छिकपिन त गुगु इले चाहिँ श्वेत ताला वे इले चाहिँ छिकपिसा थौ टिकट चाहिँ क्यादी फै नेपाली भाषा अथिरेगो मतलब नेवा मठुपी नीति चाहिँ निनेसियाई सो चाहिँ प्याची जु ढासा छि नेवा पी नीति चाहिँ सुथायो छिन्छतायो ई न प्याची ख अले निनेसिया निटा ई न प्याची छि त गुगु इला वे इले यो टिकट चाहिँ फयाम पटेल याको न हे थो टिकट या नीति स्वापुटैदी हृ न बोल सकिया छ ना थो छौ मनोरञ्जन लिस लिसिया चाहिँ गु मनोरञ्जन सङ्किपा सोया रक थ न मनोरञ्जन मखु के ओके चाहिँ अचित वादी पीडित पिन्ता नचिसँग ग्वाली एफै आतक्क यो तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पिनेको थो अथिङ्क चाहिँ आतक्क 84,000 सुया अप्प मनु तो चाहिँ थुके प्रत्यक्ष प्रभावित जुया चुङ्गु दूत धका चाहिँ थौ आ चिसन युजे स्वे खण्डा सा थो चाहिँ 2072 सालियो भुख्याय न गुली चित छेटी लागु दु उलिहे थो बादी खचे छेति लागु दु झिगु देश या त घा जुया चुङ्गु दूत थो इले चाहिँ चिस फयापतेले चिस योकोला मफु दयु चाहिँ दैमखु चिस भतिचा भति भति ठोपा ठोपा मिले जे है सागर बने जुई ढाथे चिस गुलिफु उली ग्वाली यागु चिस कुटा यागुको छि सङ्किपा सोया ए ग्वाली यामा ढेगुन मोडु तर चिस फयामफतीले सङ्किपा सोया चाहिँ थो सङ्किपा औ दा चाहिँ फुकन तेगु जुई लासा सङ्किपा सोयेगु मलासा न छित नक्तनी बियो नम्बर चाहिँ स्वापुटया छि गुली ग्वाली याना दिफ है ओके चाहिँ छित स्वापुटया चाहिँ छि थगुना लिस लिस छि गुली ग्वाली याना दिउ ख उ गोना छित चोका दि रिउ न फलसा
2: का सङ्किपा सोय मला ग्वालिया मन डुपी मन्ते पाजु मैजुबिसा चाहिँ जितन सपोटया दिफी अनि चिकमिसा चाहिँ गुली ग्वाली बिया दिउ ख पलि पियो ज्याजले चिसा अनियरे कन्ना न कनेगु जी चिकमिसा गुली ग्वालिया न दिगु र चिकनी अनुमति कया धया दिल रास चाहिँ हुन चिकमिसा ज्याजले कनेगु जी मजु लन्टा जु
1: पक्का न ज्याज जिउ नि पुगु टाइम चाहिँ
2: अनुमति बिया दिल जुस जगत व कनेगु जी
1: पक्का न ध्याटला ग्वालियो चीज चाहिँ चिसा कने मजु केनि मजु राई ठंग कने चाहिँ मख्यसे चाहिँ ग्वाली या न उली अनि मजु समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ ज्याचंगु दु फयामपतेले थयगु छेति आ त आ देशे झिउ देशे मोयमा तर चिसा फुगु चाहिँ चिसा कुटा चाहिँ यामा गुली पासपिस चाहिँ प्रधानमन्त्री कोसेना तैदी रुङ्कलाजी गुली पासपिस चाहिँ थथगु सस्ता चुनान ग्वालियाना चुनातिगु दु थथयु लाग्या चुनान तहगु थो राशि चाहिँ धनराशि कलेक्ट याना न ग्वालियाना चुनातिगु जिफु अजन जी अझ याफु जिउ पाखे चाहिँ ठुली याउ खटका चाहिँ मन चकङका ग्वाली याउ खसा चाहिँ चित्त स्वापु तैदी रु बोल सकेन चुना ज्याज चिगु यही पुगु टाइम एथौ नाङ झिगु यही पुगु टाइम चाहिँ धाइ चुनाको दु ज्याजो नाए थोए ख झिगु न्याथे जो साना झिसन यही पुगा थगु यी चाहिँ झि न्यानी वनेमा दुःख रही सदान्तै छु नि दुःख त लोमङ्का न्यानी वने फल रास तनि छौ झिगु जीवन सार्थक जी वहे हेतु ख झिगु ज्याजो चाहिँ न्याका वै चुनाको ख थौ मुक आतक प्रेम पासपी स चाहिँ न्याम पासपी स चाहिँ बोटी काइदिल न्याम पासपी मते चाहिँ पेगु पेमस्या नीति चाहिँ झिस छगु हे नेस लागु जुल आवेगु थो असोज तीन गते किन टिङ्गु सङ्किपा बहिदर बाबु सङ्किपा चाहिँ सुना चोया दिउ ख लुके सुना देका दिउ ख ढका चाहिँ नेस नेनेउ ख उके लिस चाहिँ पेम पासपिस न बासु साही ढका चाहिँ बिया दिउ ख रास निकङ्गु नेस चाहिँ बहिदर बाबु चाहिँ या निर्माता पिँ चाहिँ सुख ढका चाहिँ नेन्च नगु ख थुके लिस प्याची मो छि त थुके लिस बि त ठाकु खसाना छि त ज्याजस बोटी कया चाहिँ ढुकु
2: विशेष
1: याना चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज उपत्यका या समन्वय समिति पाखिया चाहिँ उपत्यका या विभिन्न होल्डिङ सेन्टर चुना दिपी पीडित पिङ न्युगु सहयोगार्थ चाहिँ या नीति सुकुन्द फिल्म्स प्रोडक्सन प्राली पाखे चाहिँ देखादिगु हरि बहिदार बाबु सङ्किपा थोए वैगु असोज तीन गते शनिबार खुनु अशोक हल पाटन ढोक्या चाहिँ केन्टेङ्गु जुल्ला ढासा थो सो चाहिँ निगु सो दु सुथसिया झिन्छता व
2: निनेसिया नेटा यी सुन्टसिया झिन्छटा इले चाहिँ नेपाल भाषा पाखे सोयदी फैदास नेपाल भाषा मोस्यु पनि भाजुमेज पनि नीति चाहिँ निनेसिया नेटा इले चाहिँ नेपाली भाषा ठोए बैडार बाबु या त डबिङ या नटगो नेपाली भाषा पाखे छिक्पिस सोयदी फै छिक्पिन्टा चाहिँ गु यी पाछिटा वया इले यो टिकट बुक एन दिदुन इनाफ यसे चाहिँ ठौ
1: जाजो पाखे बागु जुई ब्यागु सङ्कीपा चाहिँ देखा दिम बाजु पक्का न चोया दिम भाजु चाहिँ बासु साईजी खरा छ तकी निर्माती निर्माताजु रिता घेमोसु व कृष्ण कुमार श्रेष्ठजु ख अले थोके छायाङ्कन सम्पादन चाहिँ सोहन मानन जर्जुन यानाद्यु खरासा कथाहारी घेमोसु यु ख अले आज थोके सङ्कीपाले सुसु थो मेटादिपी हिरो हिरोइन ख उके लागि अल्ठो कथा गयौपति ख ओ सिके नीति चाहिँ आवै शनिबार चाहिँ छिप्की अशोक हले ठेङ्का चाहिँ थो सङ्कीपा सोइदि हिउँ भल सके छु न ओके नीति हाक्न सक तिकटिया नीति झित स्वापुतया नीति चाहिँ धन सम्पर्क नम्बरिया नीति चाहिँ छिक्पिन त हाक्न छक लुमङ्का चुनागु दु दक्लै नापा ज्याजु झिगुन यही पुगु टाइम या ज्यागुठी लुमङ्का दिफ है 9841744407 अथे झिगु ज्याजो न्याकवि तुलसी ज्या तन स्वापुतै दिफ है वेक यु फोन ल्याख
2: झिगु फोन ल्याख 9841745144 अठेना गौतम रासाकी जीव न चाहिँ टिकट मिया ग्वालियरको बसमा भिडियो डु यो नम्बर न कने 9841455510
1: हजुर आराशा जाजुल बायाउनेको यी जुइन गुगु थङमु कन्याम पासपिना खलबल याई गुजुल सुजेन महर्जन कृतिपुर पाखे बुद्धरत्न बज्राचार्य अथेन्तु अनिसा कृतिपुर पाखे रत्नलाल श्रेष्ठ खोप गौतम राज साख्यजु यल पाखे जाजु सपोटिकाइदिउ खाउ एकापी मध्ये थौ लक्की कलर जित टा लाम मेजु खनिसा महर्जन वेकल

0: टुना शिरपाटया दिपि सकल सिटा चाहिँ यको यको सुबा देछा छ घौची टक ज्याज सुठा लाकी त
1: घौची बहु छगौ तक ज्याज नेना दिल छगौ तक साथ बिया दिल ओके टेक्निशियन पास यात न यको यको सुबा देछा छ मेगु वाले मेगु कथ ज्याज न्याके को जी ओसिया नि हाक्न छक चिम त छिक पिन त चाल छ अशोक असोज तिन गते नाप लागेको न जी अले हजुर पकान आज आशा ज्याज पाखे बाबान मे छपुन टोटी मागु दु थौ या ज्याज पाखे जी अनिता डङ्गोल
0: जी तुलसी प्रजापति बाया भने ओज फना चना बाया सुबा जे मा बाया
2: टाइम चेक
3: इट्स 5 पीएम
2: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय High face. Be prepared. Safety first.

0: डाक्टरको परामर्श बिना औषधि सेवन नगरौ, आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहौ।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: टाइम चेक,
3: इट्स 6 PM।
4: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय हाई फेस, बी प्रिपेयर्ड, सेफ्टी फर्स्ट।

0: डाक्टरको परामर्श बिना औषधि सेवन नगरौं, आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहौं।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: Time check.
3: It's 11 p.m.
4: This time check is brought to you by High Face. Be prepared. Safety first.

धरती भरि नौलो रङ्ग नयाँ बिहानी छाइसक्यो, धरती भरि नौलो रङ्ग नयाँ बिहानी छाइसक्यो, प्रभातले मनभरि मुटुभरि नयाँ लाली लाइसक्यो, प्रभातले मनभरि मुटुभरि नयाँ लाली लाइसक्यो।